हर अगम अगाधा निःचल नाम निधान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा।

रहाओ, कर अनुग्रहो आप राखियो, नह उपज पाओ बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नै संसार।

शब्द बिन कबहु न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी गुरुमुख राम जपहो रस रसना।

बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरै। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करै। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन

गुरमुख जाता से जग मह काहे आया। गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वड भागी

बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया, प्रहलाद आप बिगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग कर

रहाउ। आन दिन भगत करह दिन राती, दुविधा शब्द खोई, सदा निर्मल है जो सच राते, सच बसिया मन सोई, मूर्ख दुविधा।

जिस कौ तुम हर राख्या पावे तिसके नेड़े कोय ना जावे। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, तू जल थल

तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध नाम।

जवान कोट मनोरथ आव है हाथ, जम मार्ग कै संगी पांठ, गंगा जल गुर गोविंद नाम,

निज घर वासी हम सुख पाया ता सब है सुहेले गुर पूरै पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते ऊचे देश मेरे बेअंत अपूछे राज हमारा सद ही निहचल माल हमारा अखूट अबेचल शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमारी।

सुन सहज महे बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो रहा।

ਹੋਏ। ਏਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਪਹਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ।

पै बिन से निरपै पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रब रहया गुर मिल नानक हर हर कहया अष्ट सिद्ध नव निद ए कर्म प्रापक जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुर मिल नानक कमल प्रगास बसंत महला पंजवां घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी विछुनिया।

मेरा सतगुरु सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेले हर आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी घर आया बसंत महला पंजवां हिंडोल।

कुबजा उधरी अंगुष्ट धार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

नखयत्र बिनासी रव ससियर बेनाधा गिर बसधा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलाधा एक साध बचन अटलाधा।

आद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमयो मनोहर हर रस जपना।

सहज तुन उपजै मन साचै निबलाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई। एक समय सब जग तो वरतै विरला एक पछाणै शब्द मरै तां सब किछ सूजै अनदिन एको जाणै। जिसनो नदर करे सोई जन बूझै होर।

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, आन दिन भगत सुहावी, मुक्त भय गुरदर्श दिखाया, जोग जोग

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहा जाहर नवी

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर भौजल जगत तरावै रहाव। जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अगे।

अनकबार ब्रह्म है बहुजोनी, एक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंग है कत सागर, कागर नाव लंग है कत सागर, वृथा कथत हम तरते। शिव विरंच असुर सुर जेते, काल

कहो नानक मेरो बनयो सुहागो पत शोभा भले अचारे। मलार महला पंजवा। प्रीतम साचा नाम त्याए

कन हर बरस सगल जग छाया, पय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा, मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

मुख गुरमुख हर समझावणी। सब बोलहो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब लह जावणी। श्लोक महला चौथा।

तीर्थ संग गहे गुर उपदेश जवाहर माणक सेवे सिख सो खोज लहे गुर समान तीर्थ नहीं कोए सर संतोख तास गुर होए रहाओ गुर दरियाओ सदा जल निर्म

प्रभाती महला पहला निवली कर्म पुअंगम पाठी निवली कर्म पुअंगम पाठी रेचक पूरक कुंभ करा बिन सतगुर।

अर्थ कहे साध संग स्नेह सत्यम सुखियम बसंत नान कहे मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं बरधंत जरुआ।

जाए पुछ हो दोहागणी तुम क्यों रैन विहाय। सोहरे ढोई ना लहै पिए नाही थाउ, फिर वातड़ी ना पुछई तन सोहागण नाउ।

धर्म है सब कल उधरे एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म सवै

काल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जन श्री पतनाथ।

मुन जन गाव है अचल छला। गाव है गुण तोम अटल मंडल वै, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सुजा।

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाने जप।

पुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेनेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरभउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रमत जहो नाम

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन कौ फुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अघ पुंज त्रंग निवारण कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और

खेल गूढ़ो कियो हर राय संतोख समाचर्यो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो आजोनी संभव्यो।

जंगम सर्प है जग के रिया बिखमाए, बिख का मारन हर नाम है गुरगरड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मेरे सतगुर निर्मल होए।

सतगुर मिलाए होमे तजै विकार हर नामा जप सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुर।

जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

हुक्म लिख दुख सुख पाए इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाए हुक्म अंदर।

गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का।

जी जात रंगा के नाव सब ना लिखिया बुरी कलाम यो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाल्यो रूप केती दात जाने कौन कूट कीता पसाओ एको कवाओ किस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कौन का विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख बाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख पगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख

सूर मोह पस्कार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल पखाहे असंख निंदक सिर करे पार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख ठाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुणगाहा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस

चार वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। पर ये हाथ पैर तन देहे, पानी तो तै उतरसके, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लिये ओ तोए। पर ये मत पापा के संग, ओ तो पै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीरथ तप दे आदत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आस बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन खिच कवन वार, कवन सिरुती महा कवन, जित हो आकार। वेल न पाया पंडती, जे हो लेख पुराण, वक्त न पायो काजिया, जे लिखन लेख पुराण। चित वार न जोगी जाने, रुत मह न कोई, जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखन सब

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारह कहन कतेबा अपनू इक तात लेखा होए ता लिखी है लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद ना जानिए समुंद सहा सुल्तान गिरहा से ती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत ना करने देन ना अंत अंत ना देखन सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद

आखें दानव आखें देव आखें सुर नर मुन जन सेव केते आखें आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख ना सके केई के जेवड पावे तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल विदार ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा के तेवा मनहारे केते राग परिस्यों कहियन केते गावन हारे गावे तोनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे गावे चित गुपत लिख जाने लिख लिख तरम विचारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवतियां दरनाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वे दानाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अथक तीरथ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे धारे से तुदनो गावे जो तुद भावन रस्ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होती जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भासी कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख है कीता अपना जिव तिसदी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साओ सा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत चोली त्यान की करें विपूत खिंसा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कटवा जैनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवें चिलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बोला खोए लख होवे लखवीस लख लख गेड़ा आछिए एक नाम जगदीश एक त्राहे पत पवड़िया

किसान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा कह जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते

ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरे ना ठागे जाहे। जिनके राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसै के लो, करें आनंद सच्चा मन सोए। सत खंड वसै निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पांड, जे को कथे ता

नानक कथना करड़ा सार, जत पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत सित ताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता तरस महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाया बुरियाया वाचे तर्म हदूर, तर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सोदर राग आसा महल।

गावन सुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे। गावन सुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे। गावन सुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोम तेरे सदा सवारे। गावन सुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दरनाले। गावन सुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ की रतनाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे। ते तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आ

होती जाए न जाती। रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना। ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करती, फिर हुक्म न करना जाई। सो पाता होता पत साहिब नानक रहन जाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए, केवट वड्डा दिशा होए। कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा रहा। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह ना जाई तेरी तिलवड़े आई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुदवे सिद्धि किने न पाया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाया। आखन वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे पंडारा। जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। आसा मेला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखन औखा साचा नाऊं। साचे नाम की लागे पूख, उत पूख है खाए चलिए दुख। तो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए राव। साचे नाम की तिलवट आई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलके आखन पाए, वदा न हो वे काट न जाए।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हाँ कुछ बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक परे बहु सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वर्ते जी तू आपे करे सोई तुझ आपे सिरत सब उपाय जी तुझ आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जनोई आसा मेला चौथा तू करता सत्यार मैं।

आज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत पद केवल नाम। शरण जाम लागे पव जल करन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै। रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हमनी।

गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए हो कर राख वडाई तोए रहाओ रिसवे चस्या घड़िया पहरा थिति वारी माओआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के तेवेश राग तना श्री मैला पहला गगन में फाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती रूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी राव सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब में ज्योत ज्योत है सोए किस दे चानन सब में चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे जम काल सह सिल डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम।

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरैनारे, मन गुरु मिल काज सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा, निज कर महल पाओ सुख सहजे, बहुर न होए गोफेरा, अंतर जामी पुरख विदाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास इह

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे ना सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला।

लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाओ, लेखे वाट चलाया, लेखे सुन वे खाओ, लेखे सालवाई है, पढ़े के पुछन जाओ, बाबा माया।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब

पर निंदा परमल मुख सुदी अग्न क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना एक कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस कोड़े रस से जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कह कट नाम निवास। जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान। ज्योतिष पावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले।

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए थाओ नाओ नीर चंगे आया सत परमल तनवास ता मुख हो वै उजला लख दासी इक दात दुख तिसे पै

कारमंदर खुशी नाम की नगर तेरी परवार। हुकम सोई तुद पावसी होर आखन बहुत अपार। नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार। बाबा होर सोना खुशी कुआर जित

आस अफर तीरथ का मुख टिक्का तित कप मत विगास ओत मत्ती सालाहना सच नाम गुणतास।

सच मिले सच उपजे सच में साथ समाए सुरत होवे पत उगवे गुरु बचनी पौ खाए नानक।

तात मिले फुन तात कहो सुस्ती सुस्त समाए। लाल गुलाल जन बरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोषिया हर जप के।

विचार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार तिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

आओ। आप सुजान ना कुल्लई सच्चा वद किरसान, पहला तरती साध के सच नाम दे दान। नौनिद उपजे नाम एक कर्म पवे निशान, गुर को जान न जाने क्या किस चज अचार। अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार, आवन जान न चुके मर जन्मे होए खुआर। चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर, चोआ चंदन बहु कहा पाना नाल कपूर। जे तन कंत न भावे ता सब अडंबर कूर, सब रस पोगन बाद है सब सिगार विकार। जब लग शब्द न पेदी है क्यों सो है गुरुद्वार। नानक

कर्म मिले सच पाए, गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कारे सच मिले, गुरमत पल्ले पाए सो नर जम्मे ना मरे, ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया, मन माया मोह मनूर,

ओ वे परवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार लख सियाणप जे करे लक्ष्यो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नावे दुख संताप हर जप जियरे छुट्टी है गुरमुख चीने आप तन मन गुर पह वेचिया मन दिया सिर नाल त्रिभुवन खोज टंडोलिया

तेरा रोग वड्डा मन माहे क्यों दर्गे पत पाई है जा हर नवसे मन माहे गुर मिले सुख पाई है अगन मरे गुण माहे मन रे एनिस हर गुण सार।

दुर्मुख कूड न पावै, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावै, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले है, सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है, कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाई है, दया करे हर हीर, श्री राग महला पहला, परने पाए ना विजवै, जे पवै दिशंतर देश, अंतर मैल

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलले सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुर पुरख न पेत्यो, सो पाव जल पचे पचाए। ए मान के जियो निर्मोल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु

तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल अग्गे साओ सुजान है लैसी वस्त समाल पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर ले।

पानी मन के शान हर हृदय जमाए ले क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया पित सुतो सगल काल त्र माता तेरे हो है ना अंत सखाया रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे इन तज आपने होए त्याय जब तप संयम हो है जब राखे कमल बिकसे मद आश्रम आय बीस सप्ताह रो बासुरो संग रे तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में

जाने नाम खुदाई जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना पढ़िए पाई सोई काजी जिन आप तजिया इक नाम किया आधारो है भी होसी जाए न जासी सच्चा सृजनहारो पंज वक्त निवाज गुजारे पढ़े कतेब पुराना नानक आखे।

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ न्यानो आपे वे खै सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई परवान।

कर पंजवा। अचल चलाई मैं चले मैं काओ कटारा कर सके, जो साहिब राखे क्यों रहे इस लोभी का जियो टल पले। बिन तेल दीवा क्यों जले रहाओ, पोची पुराण कमाई है, पौ वट्टी इत तन पाई है, सच बूझन आन जला।

मान अंतर हर रस लग रहा चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रकाशिया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगे मान सतगुरु सेवन अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार के हर राखिया उधार हों तिन के बलिहार ने जिना नामे लगा प्यार सेई सुखिए चहु जुगी जिना नाम अखुट अपार गुर मिले नाम पाई है चूके मुँह प्यास हर से की मन रव रहा कर ही मन उदास जिन्ना हर का साध आया हो तिन बलिहारे जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुणतास श्री राग महला तीजा बो पेश कर परमाई है मन हृदय कपट कमाए हर का मेल न पावी मर गुस्ता माए समाए मन रे ग्रेही माए उदास सच संजम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास राव गुर के शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे में पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां पोग करे नवखंड राज कमाए बिन सतगुरु सुख न पावे फिर जोनी पाए हर हार कंठ जिनी तहरिया गुर चरणी चित लाए तिना पिछे रिद सिर फिरे ओ ना तिल ना तमाए जो प्रभु पावे सोचिए अवर न करना जाए जन नानक जीवे नाम ले हर देवो सहज सुवाए।

सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंगत जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध पवि न बुझई अंतर लोभ विकार। लख चौरासी परम दे परम परम होए खुआर, पूरब लिखिया कमावना कोई न मेटनहार। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए, शब्द मिले ताहर मिले सेवा पवे सब थाए। पारस परसे पारस होए ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें,

ओ वेला हथ न आवई अंत दया पछताए जिस नदर करे सो उबरे हर से लिवलाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ न पाए जिन गुरुमुख हृदय शुद्ध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावे हर

गुरमुख सदा पट होए, हर हर सदा त्याए मलहों में कदे तोए राव। मनमुख नाम न जाननी विन नावे पत जाए, शब्द साधना आयो लागे दूजे पाए। विष्टा के कीड़े पवे विच विष्टा, से विष्टा माहि समाए। तिनका जन्म सफल है जो

गुरुमुख नाम से आया विच्चों आत गवाए ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरुमति हर प्याए श्री राज महला तीजा हर पगता हर तन रास है गुरु पूछ करे वापार हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया हर पगता अतुट पंडार ताई रे इस मन को समझाए ए मन आलस क्या करे गुरमुख नाम ते आए रहाओ हर पगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड पगत न हो वही दुबदा बोल खुआर सो जन लाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखी है जो हर राख है।

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याए सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर शरणाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याए रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हौ मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे होए खुआर। तातुर बाजी पलच रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है।

मन मुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी न होए, सबद न चीने सदा दुख, हर दरगे पथ

आसा, सतगुर सेव मोह पर जले कर ही माहे उदासा। रहाओ गुरमुख कर्म कमावे बिकसे हर बैराग आनंद, एनस भगत करे दिन राती होमे मार निचिंद। वड्डे भाग सत्संगत पाई हर पाया सहज आनंद, सो साधु बैरागी सोई हिरदय नाम वसाए। अंतर लाग ना तामस मूले विच्चों आप गवाए, नाम निधान सत्संग।

नाग नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग। श्री राज महला तीजा कर ही सौदा पाई है अंतर सब वस होए खिन खिन नाम समा

गुर प्रसादी मन वसे हौ मैं दूर करे एहो मन तावत ता रहे जा आपे नदर करे। पाई रे गुरमुखर नाम से आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यो सुन्ये कर काओ गुरमति कट चानना शब्द मिले हर नाओ त्रै गुण बिख्या अंध है माया मोह गुबार।

लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए। बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो जिद्दू पाईए सच सोए। असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए। एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए, नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मिलावा होए।

मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई। रहाओ इहो शरीर माया का पुतला, विच हो मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जम्मन मरना मनमुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए। सदा आनंद रहे दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुर की

पाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द फिर ना पाई है बिरथा जन्म गवाए। हों हों करती जग फिरी ना तन संपै नाल, अंधी नाम ना चेतई सब बादी जमकाल, सतगुर मिले तन पाया।

जिन जाया तन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसे मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए गुर शब्दी सालाई है रंगे सह सुवाए सच्चे सच समाया मिल रहे न बिछड़ जाए जो किछ करना सो कर रहा अवर न करना जाए चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए आपे कार कराए सी अवर न करना जाए मत तन रत्ता रंग स्यों होमे तज विकार एनस हृदय रव रहे।

अंत ना पाया जाए, कथनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चै, आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे,

देवन वाले कै हथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है।

गुर पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आये ता पाए मोख द्वार, होमे विच जग बिन सदा।

समाए। शब्द मने गुर पाईए विच्चों आप गवाए, आम दिन भगत करे सदा साचे की लिव लाए, नाम पदार्थ मन वसे।

त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन आपना हौ तिन कै लागो पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला

मन तन शीतल सास्यों सास न बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तांसी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पाए।

अपना पौ तिन पायोन जिन गुरु का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे हों मैं मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे ले मिलाए अंदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए।

गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार बिन सतगुर किने न पायो कर वेखो मन विचार मन मुख मैल न उतरे जिचर गुर शब्द ना करे प्यार मन मेरे सतगुर के पाने चल निज कर वसे अमृत पीवे ता सुख लै महल रहाओ अवगुणवंती गुण को नहीं बैन न मिले हदूर मन मुख शब्द ना जाने अवगुण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्दी मन वेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर आपे रंगन रंगियोन शब्दे लयोन मिलाए सच्चा रंग ना उतरे जो सच रते लिवलाए चारे कुंडा पाव थके मन मुख बूझ न पाए।

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

वार कट कट आपे हुकुम वसै हुक्मे करे विचार गुर सबदी सालाही है होमे विचों खोए सा तन नामे बाहरी अवगुणवंती रोए सच सलाही सच लगा सच्चे नाए तृप्त होए।

तिना सुखे सुख विहाए। ज्ञान विहूनी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

सैया सुहागणी जिनको नदर करे खसम पछाणे आपना तन मन आगे दे कारवर पाया अपना हौ मैं दूर करे नानक सोबा।

अन दिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए रहाओ। शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार, हर वर पायन कर अपने गुर के हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार, सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे जाओ।

गुरुमति नाम सलाही है, दूजा अवर न कोय रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान। शब्द नाची ने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर ना कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोली है, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमाऊं।

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

खाली को नहीं दर गुरमुखा नो सावास बिख पौजल डुब दे कड ले जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है बिन नामे त्रिग जीवास कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभु गुणतास हों तिस विटो चौखनी है मैं नाम करे प्रगास। मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए बिन नामे जीवन ना थी है मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए रहाओ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास सतगुरु सेवे लग्या कड़ रतन देवे प्रगास तन वड पागिया जो आए मिले गुरु पास। जिना सतगुरु पुरख ना पेटे हो से पागहीन बस काल ओए फिर जोन पवाइए विच विस्ता कर विकराल ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल। सतगुरु पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की निवलाए। श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए गुरमुख सज्जन गुण कारिया।

गुण गावा तृप्त मन होए, अंतर प्यास हर नाम की, गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो, गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो, हों सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बई, लख कोटी कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर ना मिले, कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है, विच पड़दा दूर पयास। बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए, मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है, कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले, विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी नानका, जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा। हौ पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्रभ दसे तिन जाओ, जिनी मेरा प्यारा रावया, तिन पीछे लाग फिराओ। कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं प्रभ मिलने का चाओ। मेरे भाई जना कोई मोको, हर प्रभ मेल मिलाए, हौ सतगुर विटों वारिया, जिन हर प्रभ दिया।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोथिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलें समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए ओए वे परवाह ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिर सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हौ मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागनी तिन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पाग ही नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आ गए ना निवे ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई न होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वज दे दर सच्चे सोबा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवा।

रस भोगें खुशिया करें माने रंग अपार बोध करें फुरमाइसी वरते हुए अपार करता चितना आवई मनमुख अंध गवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक किसी चित न पावही।

जिसनो तू पतियाएगा शोषण तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप पुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग महला पंजवा मन विलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्र तार बादशाहियां विच सहसे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थांग सनंतरा तेते पाव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लेन बिन नामे खाक रलिया कोट तेपी सेवका सिद साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिए बिन बुझे मुगद अजान सो प्रभ चित न आयो।

पंजवा कड़ी मौत का पाहुना काज सवारन हारे माया काम व्यापिया समझे नहीं गवार उठ चलिया पछताया परया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूरब लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही ने डडुरी पक्की वडन हार ले ले दात पहुत्या।

जै चाक्ष खाया चौथे पोर पया तद ही चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै।

बात जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

जपनाओ। आठ पहर प्रभु चाहे तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ। तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर न कोए, जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए। सदा सदा कर चाकरी प्रभु साहिब सच्चा सोए। साफ संगत होए निर्मला कटिए जम की फास, सुख दाता पह पंजनो।

उपाव स्याण सगल छड गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभु आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप।

इकसका मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग गुरपूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ। इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता। सो प्रभ मनो न विसरे जिन सब किछ वस कीता। कर इको बाहर इको थान सनंतर आप जी जंत सब जिन

जियो पिंड सब तिस्कार, जो तिस पावे सो होए, गुरपूरे पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम ते आए, सर्व सुखा सुख उपजे, दरगह पैदा जाए रहाओ, जन्म मरण का पाओ गया, पाओ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है, गुरु दर्शन देखने हाल, थान थान अंतर रब रहा।

मेरे मन गुर शब्दी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जामी सदा संग करने हार पछान। गुर प्रसादी मुख उजला, जप नाम दान स्नान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभिमान। पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेरवान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुख उजने साचे के गुण।

वड पागी मिल संगती सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पात साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभु मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच्यों मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्री त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए

फिरें मन तन होवे शांत, एक मन एक त्याये मन की लाए भ्रांत। गुण निधान नव तन सदा, पूरन जा की दात। सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद, तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद। देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद, अकिर्त कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा, मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार। सर्व कला कर था पिया अंतर ज्योत अपार, सदा सदा प्रभ सिमरी अंतर रख उधार। मेरे मन हर बिन अवर न कोय, प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय। रहाओ रतन पदार्थ मान।

मनमुख पसना पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भक्ति नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हरमया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज किते न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियां।

जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ। मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल, सतगुर कै उपदेश है।

करे दया प्रभ अपनी, एक निमख ना मनो विसार रहाओ। गुण गोविंद नित गाविए अब गुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार। सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार, तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर। लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर, थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर। सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान। नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप रहाओ। जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल, जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल। मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत। रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ। साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ। मेरे मन हर पज सदा एक रंग, कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग रहाओ। सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद, जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद। संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद, जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद। अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान, रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान। दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान, जियो पिंड तन तिसदा हों सदा सदा कुर्बान। मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार, दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार। पूला मार्ग पायुन गुण अवगुण ना विचार, नानक ते शरणागति जे सगल कटा आधार। श्री राग महला पंजवा। रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए, मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरै सोए, मन मेरे साचा सेव जिचर सास। बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश रहाओ। साहेब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार। सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार, सदा सदा सालाही है अंत न पारावार। परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा आराधी है एहा मत विशेख। मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवा। संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल, तोसा बंदो जी का एथे ओथे नाल। गुरपुरे ते पाइए अपनी नदर निहाल, करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल। मेरे मन गुर जेवड अवर ना कोए, दूजा थाओ ना कोसु जै गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए।
गुरदाता समरथ गुर, गुर सब में रहा समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया, पै पंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत ना लागे डंड। गुर नाल तुल ना लगई, खोज डिठा ब्रह्मंड, नाम निदान सतगुर दिया, सुख नानक मन में।

छोड़ सगल सियाण पास साठ शब्द लिवलाए रहाओ। दुख कलेश ना पाओ व्यापे गुरु मंत्र हृदय होए। कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधारण है पाप सगले जाहे। हौं तिनके बलिहारणे जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसे साच हर का नाओ। सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार। जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार रहाओ। काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार। सत संतोख दया कमावे ए करनी सार। आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा। दुखरित सुकृत मंदे संसार सगलाना। दोहू ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरुष सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही। तत समदर्शी संतो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहो कीरत करला। कथन कहन ते मुक्ता गुरुमुख कोई विरला। गत अविगत कछ नदर ना आया। संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवा। कर सतवा तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। फूले चूके बालक तू हर पिता माया।

बंदन मुकुट संतो मेरी राखे ममता, पै कृपाल ठाकुर रहो आवन जाना, गुर मिल नानक पार ब्रह्म पछाना। श्री राग महला पंजवा कर पहला, संत जना मिल पाया कटेड़ा जमकाल, सच्चा साहिब मन मुठा हुआ खसम दयाल, पूरा सतगुर पेटिया बिनस्या सब जंजाल। मेरे सतगुरा हों तुद विट्टों कुर्बान, तेरे दर्शन को बलिहारण।

पिछे छुटी है जिन अंदर नाम निदान गुरजेवर दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुवाय सच्चे से तीरतिया दरगह बैसन जाए करते हथ वड्याइया पूरब लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहेब सच टेक सच्चो सच वखाणिए सच्चो बुद्ध विवेक सर्व निरंतर रव रहा जप नानक जीवे एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजिए संतन लाए प्यार सतगुरु दाता जी का सबसे

पाखंड प्रेम ना पाईए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़।

माने ना हो, साची प्रीत ना टुटई, साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेदिया, हो सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई, जे सतगुर माए समाए। फिर रिसालू नौ तनो, साचो मरे न जाए। नित रवे सुहागणी, साची नजर रजाए। साच तड़ी तन मांडिये, कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चीत वसाया, मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहणी, मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावणी, साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख न जाने, साचे गुर कै हेत प्यार। निस अंधियारी सुतिए, क्यों फिर बिन रैन विहाय। अंक जलो तन जालियो, मन तन जल बल जाए। जा तन कंत

तो पूछो जाए, सतगुर मेली पैवसी नानक प्रेम सखाए। श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथे आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू आपे मोल अपार, साचो मन महत तू आपे देवनहार, हर जियो तू करता करतार, ज्यो पावे त्यों राख तू हर नाम मिले आचार, रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीत, आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ, गुर कै शब्द सलाहना कट कट डीठ अडीठ, आपे सागर बोहे था आपे पार अपार, साची वाट सुजान तू।

आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए। हर जियो शब्द पछाणिए सांच रते गुरवाक तित तन मैल ना लग गई सच कर जिस ओताक नजर करे सच पाईए बिन नावे क्या साक जिन्नी सच पछाणिया।

साची दरगह बैसई भगत सच्ची अरदास पत स्यों लेखा निबड़े राम नाम परगास। ऊंचा ऊंचो आखिए कहो ना देखिया जाए जै देखा तह एक तू सतगुर दिया दिखाए जोत निरंतर जाने।

पछी त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हाँ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यो पंखिया जाली बद्धक हाथ, गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुतिये कोई न संगी साथ।

मुख झूठे झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए। बिन अब शब्द न मांझिए साचे ते सच होए। मुंदे गुणहीनी सुख के पिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख ने रहाओ। पिर परदेसी जेती है तन वांडी चूरे। ज्यों जल सोड़े मछली करण पलाव करे। फिर पावे सुख पाईए जा आपे नदर करे। फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल। सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल। काम काम ना आवे खोटी अवगण यार। ना सुख पेई है सौरे झूठ जली बेकार। आवण

अवगण त्याग समाय है, गुरमत पूरा सोए रहाओ। विन राशि व पारिया तके कुंडाचार, मूल न बुझे अपना वस्त रही कारबार। विन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ियार, लाहा एनस नौतना परखे रतन विचार। वस्त लह कार अपने चले कारज सार, वन जा रहा स्यों वनज कर गुरमुख ब्रह्म विचार। संता संगत पाई है जे मेले मेलनहार, मिलिया होए ना विछुड़े जिस अंतर जोत अपार।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ न।

ठाक न होए, नानक एको रव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदिर।

एक निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर ना पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूनिया मुह काला पत खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हों मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला। सुन मन फूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागणी क्यों थिर रहे सुहाग।

गुरमत पत सावा तिस तिस कै संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवऊ बिन नावे मर जाओ, मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधुला चेले ना ही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने कर काओ। बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल न पाइए जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पदनीत। हौ गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हौ मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारी है सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार, दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए, रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हे प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया कीमत कह न जाए, हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, वापारी बन जा रहा आए वजो लिखाए, कार कमावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस चिल ना तमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल, आप तुलाए तोल सी पूरे पूरा तोल। कथने कह न छुटिए ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच न पाइए बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार। श्री राग महला पहला। सतगुर पूरा जे मिले पाइए रतन विचार, मन दीजे गुर अपने।

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरी आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार अवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नावे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब से।

बिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरुमुख अंतर रव रहा, बसे भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत करे, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों

हमें मैल न जाए। सोहम आप पछाणिए शब्द तेज पति आए, गुरुमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पति आए, मन मत सो जीना पवे विचड़ चोटा खाए। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मन मत पुले पुलाइए पूली थोर न काए। गुरु बिन को ना दिखा।

अग्नि ना फिर अंक समाए रहाओ। पुली फिरे दिसंतरी पुली द्रोह तज जाए पुली डूंगर थल चढ़े पर मैं मन डोलाए तुरो विछनी क्यों मिले गर्भ मुठी बिरलाए। विछड़िया गुर मेल सी हर रस नाम प्यारे साच सहज शोभा कनी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार। अखर पढ़ पढ़ पुलिये पेखी बहुत अभिमान तीरथ नाता क्या करे मन में मैल गुमान गुरु बिन किन समझाइए।

ने जग छद्या लब लोभ अहंकार मोह ठगौली हों हुई सावर कै संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए मैं तुझ बिन अवर न पावई तू पावे सुख होए रहाओ नाम सलाही रंग स्यों गुर कै सबद संतोख जो जी सह सोचल सी कूड़ा मोह न वेख वाट वटाणु आया नित चलदा साथ देख आखन आखे केतड़े गुर बिन बूझ न होए नाम वडाई जे मिले सत रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा करा न कोए गुर शरणाई छुटी है मन खोटी रास अष्ट तात पाप साहती करिए सबद विदास।

जिन तन मन साज सुधारिया तुस सुरती निगलाए रहाओ। तन दै संतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नाम में तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए। अर्ग शरीर कटाई है सिर करवत धराए, तन है मंचल गाली है ती मन से रोग न जाए। हर नाम में तुल न पुजई सब जिथी ठोक बजाए, कंचन के कोट बत करी

गुरमुख मोख द्वार, सचो ओर है सबको ऊपर सच आचार। सबको ऊंचा आखिए नीच ना दूसे कोई, इतने पांडे साजे एक चानन के होलोए। कर्म मिले सच पाइए थोर बख्शना मेटे कोई, साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकथ कथा विचारी है जो सतगुर माहि समाए, ई अमृत संतोखिया दर्गे पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए, विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

नाले हर सो सोग गुरमुख शब्द रंगावल एनस हर रस भोग चित चले वित जावनो साकत डोल डोलाए बाहर ढूंढ भी गुची है कर्म है वक्त सोथाए मनमुख हो मैं कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए साकत निर्गुण आ रहा अपना मूल पछाण रकत बिंदता एक।

तिस आखिए जिस गुरमुख वस्या सोए, नाम विहुने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए। जो सुपने निस्फुली है जब लग निद्रा होए, क्यों सरपन के वस जीवड़ा अंतर हो में डोए। गुरमत होए विचारी है सुपना इहो जग लोए, अग्न मरे जल पाई है जो बारिक दूधे माए। बिन जल कमल सो नाती है बिन जल मीन मराए, नानक गुरमुख हर

जो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पाउजल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले।

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुरु भगत न होए आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे कोई हर जियो सच्चा।

रहाओ। आपे हर जग जीवन दाता, आपे बख्श मिलाए, जी जंत एक आवे चारे, क्या को आप सुनाए, गुरुमुख आपे दे वडियाए, आपे सेव कराए, देख पुटंब मोह लुभाना, चल दिया नाल ना जाए। सतगुरु से गुण निधान पाया, किसकी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। तेरी अड़े जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने, अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वसिया, अंत गया पछताई। तेरी अड़े जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करे दिन राती, हूं मैं मोह चुकाया, जिस यो राता तैसो हो गए, सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए, गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे, हूं मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे, सच रखिया उद्धार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे, हो मैं दुख सब जाए, सतगुरु शब्द सुनाया, हो सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए, दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुख दाता, कर कृपा मन वसाई, नानक सोबा सुरत दे, प्रभ आपे गुरुमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे, जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे, हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए, गुर पूरब करते लिखिया, किना गुरमत नाम समाए, रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ, सुपने सुख ना पावई, दुख में सवै समाए, जे हर हर की चै बहुत लोची है, किरत नाम ते आ जाए, हर का पाना भगती मन्या, से भगत पे दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों, बिन कृपा ले आना जाए, जो सो अमृत नीरी है, पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे

लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास ना बैठी है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना।

हुक्म ना जाने बपुड़े पूले सिरे गवार मन हज कर्म कमाऊं दे नित नित होए कुआर अंतर सांत न आवई ना सच लगे प्यार गुरमुखिया मोह सोहने गुर के हेत प्यार सच्ची पगती सच रते दर सच्चे सच्यार आए से परवान।

नानक नाम वडाइया करम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मन मुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाये, पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए। सदा फिर निंचल पाये ना ओ मरे न जाए, शब्द मिली न बिछड़े फिर कै अंक समाए। हर निर्मल अप उजला बिन गुर पाया न जाए, पाठ पड़े ना बूझई तेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए, माया मोह चुकाया गुरमति सह सुवाए।

आए बिन शब्द परम न चूके ना विच्चों हो मैं जाए बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए शब्द हो मैं मारिये माया का परम जाए नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुभाए बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए भगत वत्सल हर मन वस्या सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्द हर्षा लाहिए करम प्राप्त होए श्री राग महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए मन मुख कर्म करे नहीं बूझे बिरथा जन्म गवाए गुरबानी इस जग में चानन कर्म वसे मन आए।

सबद अपार आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार सहजे अदृष्ट पछाणिए निरपौ ज्योत निरंकार सबना जिया का इक दाता ज्योति ज्योत मिलावन हार पूरे सबद सलाहिए।

सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए पूरे शब्द सब सोजी होई हर नामे रह समाए मन मेरे सतगुरु से चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई ज्यो राखे त्यों रहना गुर के शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल करना वड्डे पाग नाव पाई गुरमुख शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता।

आई, इतना मनमुख शब्द न पावे, बंधन बंद पवाया, लक्ष्यो राशि फिर आवे, दिखा जन्म गवाया। भगता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते, अंगिन गुण गावे सद निर्मल, सहजे नाम समाते, गुरुमुख अमृत बाणी बोले, सब आत्म राम पछाणी, एको सेवन एक आराधे, गुरुमुख अकथ कहानी। सच्चा साहिब सेवी है, गुरुमुख वसे मन आए।

सतगुरु जिनी ना सेवेओ सेखित आए संसार जम दर्ब दे मारिए फूक न सुने पुकार बिरखा जन्म गवाया मर जमे वारो वार एहो जग जलता देख के पज पे सतगुर शरणा सतगुर सच दिलाया सदा सच संजम रहना सतगुर सच्चा है बोहिखा सबदे पवजन करना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पर पंडित मोनी थके दूजे पाए पट खोई

होए दुश्मना साफ दे पज फैले सबो पजे आसरा चुके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तकीवाओ साहेब नितान्या का तान आए न जाई फिर सदा गुर सब जी सच जान रहाओ जे को होवे दुबला नंग पुख की तीर दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाओ ना को करे।

रोग ग्रस्त पुतंग पलेत्या कद हरख कद सोग गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए चित आवे उस

ब्रह्म जम कंकर वस्तरिया। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जो जो ओ वधाये त्यों त्यों हर्षों रंग। दोहा श्रेया का खत्म आप।

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काट ना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता, सगल उकत

निर्मल जोत तिन प्राणियां ओए चले जन्म सवार जियो तेरियां सदा सदा चंगियाईयां मैं रात देह वडियाईयां अनमंगियां दान देवना कहो नानक सच समार जियो श्री राग महला पंजवा तै पाए मनाई सोई जियो सतगुर पुरख मिलाया किस जेवड अवर न कोई जियो रहाओ गोसाई महिंदा इच्छदा अम अबे थावो मिठड़ा तैन पाई सब सजना तुझ जेहा नाही कोई जियो तेरे हुक्मे सामने आया मैं सत का हल जो आया नाव बीजन लगा आस्तर हर बोहल बख्श जमाए जियो हौ गुर मिल इक पछाणदा दोया कागल चित न जानदा हर इक तै काणे लायो ने ज्यों पावे तिवें निभाए जियो तुसी पोजो पुंचो पाइयो गुर दी बाण कवाए तैनाइयो हौ होआ मां।

मन चिंदी सो फल पाएदा सबे काज सवारियन लायन मन की भुख जियो मैं सदया सबो तंगड़ा गोसाई सेवी सचड़ा नौ निज नाम निदान हरे मैं पल्ले बद्दा छिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुर अंतर समझ वसाया सतगुर पुरख विखा लिया मस्तक तरके हाथ।

لگا پائے جیو سن گلاں گر کہ آیا نامدان اس نام دڑایا

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुरी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरवास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाई एवन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा करतान हथो हथ नचाई प्राणी माप कह सुत मेरा चेत अचेत मूर मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने मन भीतर कर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा तन जोबन स्यों चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा चुके जित हर का नाम न चेत प्राणी विकल पया संग माया तन स्यों रता जोबन मता अहला जन्म गवाया धर्म से तीवा पार ना कीतो कर्म ना कीतो मित कहो नानक की जय पहरे प्राणी तन जोबन स्यो चित चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे न मिलिया पेत पेत चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दो आले छिन में पया पराया साई वक्त प्राप्त होई जिस

ज्ञान त्यान गुण संजम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरत वर्त सुच संजम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जहां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिद पया तन खीन अखी अंध न दिसई बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने न वैन। अखी अंध जीव रस नाही रहे परातो ताना गुण अंतर नाही।

मेरा मेरा कर पालिए वनजारिया मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

तन चितवे तन संचवे वन जा रहा मित्रा, हर नामा हर ना समाल, हर नामा हर हर कदे ना समाल, जे होवे अंत सखाई। यो तन संपे माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई। जिसनो कृपा करे गुर मेले, सो हर हर नाम समाल।

पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहांदी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करहो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो जित मिल हर

मुख नाम ते आया। हर पुरुख ना कभी बिन सै जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको जप हर।

मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए। मन सिंधे से फल पावे चरण कमल चितलाए। जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जियो मित्रा बिख सागर संसारे। चरण कमल कर बोहित करके सहसा दुख न व्यापे। गुर पूरा पे टैवड पागी आठ पहर प्रभ जापे। आप जुगादी सेवक स्वामी पगता नाम आधारे। नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे। मन प्यारे आज

जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूरन कृपा प्रभ करी कर गहली ने हर जसोदी ने जोन ना पावे नह मरी सतगुर दयाल कृपाल पेटत हरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन न जाए अकस स्वामी सदके जाए ना।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुरसन आई पाई है मन जारिया मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाऊं दे ज्यों वे सुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए। चल जिया

काम न चेतियो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर पीत लगाए वड पागी गुर पाया गुर सब्जी पार लगाए। रहाओ हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के। हों बलिहारी तिन को जिन हर पाया गुरमते जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुर शरणाई पज पो जिंदु सब किलिख दुख पर हरे। रहाओ कट कट मैया मन वसे क्यों पाये कित पत गुर पूरा सतगुर पेटिये हर आए वसे मन चित। मैं तार नाम आधार है हर नाम में ते गत मत मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम से आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरु बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुथा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी।

तै देखे बिन प्रीत ना उपजे, अंधा क्या करे, नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता इक इको दीवान, हर इक सैदा है अमर इको हर चित तार, हर किस बिन कोई ना है डर परम पौ दूर कर, हर किसे नो साला है जे तुद रखे बार कर, हर जिसनो हुए दयाल सो हर जप पौ बिखम।

मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच ता दरिये केत जिना नानक सच पछाणिया से सच रलेत। श्लोक पहला तीजा। कलम जलो सन मसवाणी है कागज भी जल जाओ लिखन वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए। महला तीजा। होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नावे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार। कौड़ी। हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

पौड़ी। शिष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक समाया, एक वल छल करके खाम दे मुंह कूर कुसत तिन्नी ताया। तुद आपे पावे सो करें, तुद ओते कम कोई लाया। इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने, माया मोह सुआए। दूजे पाए हर नाम विसारिया, मन मूरख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते, जो देंदा रिजक समाहे। जम का पा था गलो न कटी है, फिर आवे जाए। मन मुख किछू न सूजे, अंगले पूरब लिखिया कमाए। पूरे पाग सतगुर मिले, सुखदाता नाम वसै मन आए। सुख माने सुख पहनना, सुखे सुख विहाए। नान सो ना मनो ना विसारिये, जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया, सच नाम गुण तास। गुरमति आप पछाणिया, राम नाम प्रगास। सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास। जियो पिंड सब तिसका शिव करे अरदास। सच्चे सब सलाहना सुखे सुख निवास। जप तप संजम मने माहे, बिन नावे त्रिग जीवास। गुरमति नाव पाईए, मन मुख मोह विनाश। ज्यो पावे त्यो रास तू, नानक तेरा दास। पौड़ी। सब को तेरा तू सब सदा, तू सब ना रास। सब तुदे पासो मंग दे, नित कर अरदास। जिस तू दे तिस सब किछ, मिले इक ना दूर है पास। तुद बाजो थाओ को नाही, जिस पासो मंगिए मन वेखो को निर्जास। सब तुदे नो सलाह दे, दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा। पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा, माया मोह प्यार। अंतर ब्रह्म न चीनई, मन मूरख दावार। दूजे पाए जगत प्रबोध दा, न बुझे विचार। बिरथा जन्म गवाया, मर जम्मे वारो वार। महला तीजा। जिन्नी सतगुर सेविया, तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार। सदा सांत सुख मन वसै, चूके कूक पुकार। आपे नो आप खाए मन, निर्मल होवे गुर सबदी विचार। नानक सबद रते से मुक्त है, हर जियो हेत प्यार। पौड़ी। हर की सेवा सफल है, गुरमुख पावे थाए। जिस हर पावे तिस गुर मिले, सो हर नाम त्याए। गुर सबदी हर पाए, हर पार लगाए। मन हट किने न पायो, पुछो वेदा जाए। नानक हर की सेवा सो करे, जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा। नानक सो तूरा वरियाम, जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया। गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया। आप होवा सदा मुक्त, सब कुल निस्तारिया। सोहन सच द्वार नाम प्यारिया। मन मुख मरे अंकार मरण बिगारिया। सबो वर्ते हुकुम क्या करें विचारिया। आपो दूजे लग खसम विसारिया। नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा। गुरपूरे हर नाम दिलाया, तिन विच्चों परम चुकाया। राम नाम हर कीरत गाई, कर चावन मद दिखाया। होमे मार एक लिव लागी, अंतर नाम बसाया। गुरमति जम जोहे न साके, साके नाम समाया। सब आपे आप वर्ते करता, जो पावे सो नाई लाया। जन नानक नाम ले ता जीवे, बिन नावे खिन मर जाया। पौड़ी। जो मिलिया हर दीवान स्यों, सो सबनी दीवानी मिलिया। जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू, उसके मोहे जिथे सब पापी तरिया। उस अंतर नाम निदान है,

तो ऐसा हर नाम से आए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नामे अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिरके पाणे ना चले हुकम करे गावार। गुर के पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए। हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ।

इतना को न जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, पेखत ही जमराव हसे, ऐसा तै जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया रहाओ। कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जात पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विच्चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हुकम पछाण ता खसमे मिलना, रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा, प्राणी जरा मरण पौ विसर गया, कुटुंब देख बिगसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जम है तना, तिन आगलड़े में रह न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीसला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ। अनेक अनेक भोग राज बिसरे, प्राणी संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंथ चालना, प्राणी रव सत तहना परवेसं, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सब किस जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किस कह न जाए, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे रहाओ। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की, पहरियां कह कर।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा निर्तक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मिस मेद अमृत दिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया।

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम से आया, गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर न जाना, कोई सज्जन संत मिले वडपागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे, हर हर दया।

गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत्संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने हौ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दीजे गुरु पूरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रिक दीन सतगुरु शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई।